0: गिलास तुम कुफा भी
1: रंडेश का हारे ना हम तन जिरें दिया ये फमिया विची मिया अंबिफ्ट मियारें ये रंजोत तुझो फंदा तुझे मिस क्रीज फा फिरेने ना तेल माना ना तुम ने रंजोत तुझो रूसी ऑस्ट्रेलिया और मादागास्कर ना उन मादागास्कर अंत फिट संभव करा जाता नो सच्ची हम बोला सिंफानी चाकी चुआ निउलु ना एटु आराची फानी चाकी चुनु ला एटु दिया रावत तेरक ले फुम्बा फ्शेने ना ट्रम्ज़े सच्ची ना दिस माफ़ा पुए जन फंपिनारा ना ना तोते तो दिया बामाना ना उल्ला याने जेन जासे मिशन जासे Asan ini lana zan famrunan androba asun jas, yej hari miatik, anfu mairvek anfaseran. Zain faseran lana zan. Zanui tunggu ya capci kiam zifton zai. Fa mana na areto pelatan cik, fil fil zasana penar ni rotunjo. Rua nu ipeta niwa vunti firinenti. Fa zai cilesa katu keren zai, cilesa katu keren zai. Fa resaka politika zay zavatra zay. Politika no resaka politika zavatra zay. Raha mijerintsika eto dia tadidio fa ambeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho andrainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम कुछ अभी
1: बमंगता काम को मिन्ना बुमंगा केर संसाय बाई सेरों फुकतान नंबुमा इंस फावटन संसाय ने बुमा इंस अनोटन समास निनी नमी से ट्रम्प सोफा अंड्रासन रासलाव टेनिस फिजरा ना ताने ते पियांस चाते वामनी रोपुल ते उयोन ना तमले ले फोरुन निस फंड्राइस ना ना रना ना या ते उटन फिट फिन ले प्रेस ना इस मुझांस ते ना प्रेस ना वो टुने करते मोबिल ते फिर पेरां फुट से ले सुरात ना ते ते से सेम बस सुरात प्रेस ना ते सान ना तो ने ने वे अंदो सुरात ना रा वो टो ये वेतना मेनो तुझी सम ना तो न तुम रखाये सिस्टिलो इस

0: क्लास तुमको फाफी
1: अलक्षण नम पास के साने भगवान या ते यंदे इसे ब्लॉक सही इसे ट्रॉन्ग यू सेज़न ते ना प्रोग्राम नहीं हुआ तो उसे कुछ ते बना बोल वापिस सही ना लोग ना सकाफ का ते सेज़न सफ़ीद नहीं हुआ ना ट्रॉन्ग फ़ैलाम बोल नहीं जाने वचनों में नहीं मिस सकेला ना करूँ आ ते फ़ैलाम बोल नहीं वचनों में ना वो इसे ते सही मेरे किस ते मलो
2: I'm so fearful in a salon. They say, I want to cut some knife at the Manzana class and diamond in. I want to cut some tall monosit, some sagasagas, that's some folks, that's a monin. How them monos, the Mahatan Funaya, the Manetan and Malacas Rizadis, Manos Nakura and Brahmiatwa, the Selen by the Navy, Ingalem by Susan Atolu for Carriza. Salama, I wouldn't say Salama, says a tooth.
3: Favacayan, Afaka Mundetic Panutic Mila Fibipan and Tantic Hoxiki Pipak. Here a piva, here a fideranaphone, the Nefan and Tilianera to Mati and Rendiran, so tools or Renfa here at the Amira to toot of a chicken guest of Fanam Sony. Son of Hirinetic as a tit of a Latakalan chick.
4: The Krabokadamus and the Nandian. Semba antikian ruang ke si baru tenambang netosan bang panen bang tukasan ini memas nang fat dan ya macam macam kemud nanti tu kita kena isanan ini cuma musan ini arah tu jid macam macam rumbe full mood di semba sekali ni bang ini sahaja top ni tu warna tu kita kan. Soalnya tentang fit fit Chelsea su tempat tu tempat tuan. Kalau ni dalam bulan musang tu, ni mi fafa ke zonnya so tom so ni mana contian mana mana.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk fafa.